जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजाने तैन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बैत निकी खटाने जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजाने तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बैत निकी खटाने जी की एक ही पैमाने अवर जतन कर रहे बहु तेरे तैन तिल नहीं कीमत जाने जी की एक ही पैमाने अवर जतन कर रहे बहु तेरे तैन तिल नहीं कीमत जाने रहाओ अमृत नाम निर्मूलक हीरा गुर दीनो मन ताने डिगे ना डोले दृढ़ कर रहो पूर्ण होए तृपताने ओए जो बीच हम तम कछ होते।

0: अरूप है अनूप है अजो है अपू है
1: अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है
0: अजय है अपे है अजेत है अपीत है
1: त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है
0: अनिल है अनाद है अजय है अजाद है
1: अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है
0: अगंज है अपंज है अचूच है अचंज है
1: अमीक है रफीक है अदंत है अबंध है
0: निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है
1: अलाह है अजाह है अनंत है महंत है
0: अलीक है नरसरीक है निर्लंब है असंब है
1: अगम है अजम है अपूत है अशूत है
0: अलोक है अशोक है अकर्म है अभर्म है
1: अजीत है अभीत है अबाह है अगाह है
0: अमान है नदान है अनेक है फिर एक है
1: कुचंग पयात छंद
0: नमो सर माने समस्त निदान नमो देव देवे अपेखी अपेवे
1: नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे
0: नमो अनंगी नाथे नरसंगी परमाथे नमो भानु भाने नमो

0: स्वरूपे नमराजर वेश व्यंग परम रूपे
1: नमो जोग जुगेश्वर परम सिद्धे नमो राज जुगेश्वर परम प्रीते
0: नमो शास्त्र पाणे नमो असुर पाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
1: अपेक्षिया परमी अपोकी अपोक्ते नमो जोग जुगेश्वर परम जुगते
0: नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रिय देवे सो धर्मे
1: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो
0: नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संग स्नाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंतरंग नमो इसे इसे नमो तंत्र तंत्रंग
0: सदा सच दा नंद सर्वंग प्रणासी अनुपे अरूपे संवत्सरन्यवासी
1: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता अतो उर्दर दंग गंग हर्ता
0: परंग परम परमेश्वरंग पुरुष पालंग सदा

0: पदे नंदी स्वरूपे नम सर माने समस्ती नदाने
1: नमस्वंग निनाथे नमस्वंग परमाथे नमस्वंग गंजे नमस्वंग बंजे
0: नमस्वंग अकाले नमस्वंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पीछे
1: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महा माहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व
0: पीतंग नमो सर्व ज्ञान नमो परम तानिंग नमो सर्व मंत्रिंग नमो सर्व जंत्रिंग
1: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे
0: नमो जीव जीविंग नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समासंग परसिजे
1: कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धंग निवासी चरपट शंत व प्रसाद
0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे चाल भोगे
1: अचल राजे अटल सजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
0: सर्विंग दाता सर्विंग ज्ञाता सर्विंग भाने सर्विंग माने
1: सर्विंग प्राणंग सर्विंग त्राणंग सर्विंग भुगता सर्विंग
0: सर्वं देवें सर्वें पेवें सर्वें काले सर्वें पाले
1: द्वार शांत व प्रसाद
0: आदरूप अनाद मूर्त जोन परख अपार
1: सर्व मान्तर मान देव पेव आदोदार
0: सर्व पालक सब कालक सब को

0: जाका रूप रेखना राग
1: जतर ततर दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग
0: नाम कान बिहीन पेखद ताम होना जाहे
1: सर्व मान सर्वतर मान सदैव मानत ताहे
0: एक मूर्त अनेक दत्त की

0: तात मात ना जात जाकर जन मन बिहीन
1: चक्कर बकर फिरे चतुर चक मान ही पुरदीन
0: लोक चौदह के विखे जग जाप ही जे जाप
1: आद देव नाद मूरत थाप्यो सबे जय थाप
0: परम रूप पनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार
1: सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गण पंजन हार
0: कालहीन कला संयोगता काल पुरख आदेश अंग रागना रंग जाका जात पात ना नाम
1: गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम
0: आप रूप अमीक अन औसत एक परख अवतूत
1: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असोत
0: अंग हीना अपंग नातम एक परख अपार
1: सर्व लायक सर्व गायक सर्व को प्रतपार
0: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अन भेख
1: सर्व शास्त्र ना जान ही जह रूप रंग अरेख
0: परम वेद प्राण जखा नेत भाखत नित
1: कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवे बहुचित मद पार संत व प्रसाद
0: गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग
1: अनुपम प्रकाश निज दिन अनास आजान बाहो शाहन शाहो
0: राजान राजपन आन पान देवान देव उपमा महान
1: इंद्रान इंद्र बालान बार रंकान रंग कालान काल
0: अनपूत अंग अबा अपंग गात मित अपार गुण गण उदार
1: गुण गण प्रणाम निर्भय काम अद्भुत प्रचंड मित गत खंड
0: इस कर्म अदृष्टा धर्म सर्व पंडन अंडन बड
1: चाचरी शांत व प्रसाद
0: गोविंद मुकंदे उदारे अपारे
1: करियं निनामे अकामे पुचंग पयात शंद
0: चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
1: चतर चक्र भाती चतर चक्र पाती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने
1: चाचरी शंद
0: ना सतरे ना मित्रे ना परमंग ना पितरे
1: ना कर्मंग ना काये अजन्मंग अजाये
0: ना चित्रे ना मित्रे पर हैं पवित्रे
1: परदिशे आदिशे अदृशे अकृशे भगवती शंत व प्रसाद कथते
0: के आछे जेछे के आप इस बीच के आ गंज कर्मे के आ पंच भर में
1: के आ पिज लोके के अदित सोके के अवधूत भरने के बभूत करने
0: के राजन प्रमा के धर्म तना के आसोक भरने के सर्व अभरने

0: निकल कायक है।
1: बसंबर है करण आले है नरप नायक है सर पायक है।
0: भजन है अरगंजन है रे प्रतापन है जप जापन है।
1: अकलंकृता सर्वा कृता करता कर है हरता हर है।
0: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुचंग पयात छंद।
1: नमो सूर सूरज नमो चंद्र चंद्र नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
0: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
1: नमो राज सिंह ताम सिंह तांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
1: नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
0: नमो कले कर्ता नमो सात रूपे नमो
1: अनंगी कलांका रूपे लंकर अलाके नमो आस आसे नमो बांक बांके
0: अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तरपंगी तरकाले अनंगी अकामे एक अच्छी शंद
1: अजय अले अपे अबे अगंज अपंज अलख अपाख
0: अकाल दयाल लेख अपेख
1: अनाम काम गाह डाह
0: अनाथे परमाथे अजोनी अमोई
1: नम ना ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे
0: कर्मंगा परमंगा गंजे अलेखे पुचंग पयात शंद
1: नाम सुर प्रणामे सुमत सुर प्रणासे अगंजल नामे संवसन निवासे
0: फिर कामंग बैपूते समसल सरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग बैपूते
1: सदा सच दा नांद सत रंग प्रणासी करी मुन कनिंदा सुमत सन वासी।

मानवेंद्र गजेंद्रनरा तप जो त्रिलोक राज करेंगे। ब्रह्म हे सर्वे सन सची पात अंत।

0: आप हाथ मुझे वरिया मरण काल का त्रासन वरिया
1: जो सदा हमारे पच्चा चिरिया जो करे हो रक्षा
0: राख ले हो।

0: स्वरूप स्वयं
1: भव। अवश्या मेरी तुम करो सिख बार सिख संग रूप जे अस तुझ तब सरणी पर तिन के दुष्ट दुक्त हुए मरे
0: जो

0: हो सोहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सोनाया
1: इतन के मन वसे आज ध्रुव लिखिया आया
0: एक फिरे कनेरे करे कला गली किने ना पाया
1: कहे नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया
0: पवित्र होए से जना जिनी हर त्याया
1: हर त्याया पवित्र होए हे गुरमुख जिनी त्याया
0: पवित्र माता पिता कुटुंब सहज सो पवित्र संगत सबाया
1: कहे दे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया
0: कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया
1: करमी सहजन उपजे बिन सहजे सहसा ना जाए
0: ना जाए सहसा कदे संजम रहे कर्म कमाए
1: सहस जो मलीन है कत संजम तोता जाहे
0: मन तो बहु शब्द लागो हर से रहो चित लाए
1: कहे नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे सहसा बजाए
0: जियो मैले बाहरो निर्मल बाहरो निर्मल।

0: माता आपे पिता जिंदियो पाए जगत दिखाया। कहे नानक सिष्ट का मूल रचया जोत राखी ता तू जग में आया।
1: जाओ प्या प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया।
0: हर गाओ मंगल ने सखी है सुख दुख ना व्यापे। अनहत बाणी गुरु शब्द जानी हर नाम हर स्पोगो।
1: नानक प्रभाप मिलिया कर्ण कारण जोगो।
0: ए श्री राम मेरे अस जग में आए कै क्या तुत कर्म कमाया।
1: ये कर्म कमाया तुत शरीरा जा तू जग में आया।
0: जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया। कहे नानक शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुरु स्यों चित लाया।
1: नेत्रो मेरे हो हर तुम है जोत तरी हर बिन अवर न देखो कोई।
0: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर ने हलिया।
1: हो भी संसार तुम देख दे हो हर का रूप है हर रूप नदरी आया।
0: गुर प्रसादी पूजिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई।
1: कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होई।
0: ए सरवणो मेरे हो सच सुन न नौ पठाए।
1: सच सुन न नौ पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी।
0: जत सुनी मन तन

तान दिबान तू है मेरे स्वामी, मैं तो दिया गए अरदास, मैं होर थाओ नाही, जिस पै करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सुकह टल गुर सेवी है, हंस सहज सुभाई, दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। धन वाहिगुरु साहिब जी।

ना मिले खन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवास जा का दृष्ट कशु न आवय तत्काल उदय दस प्रगटावय जा को अपनी करे बख्शीशता का लेखा न गण जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जी वह देख बढ़ाए इसका बल नाही सात करण करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी वपरा जियो जो सुभाव है सोई फंस्यो कबू ऊंच नीच में बस है कबू सोगर खरंग हस कबू नेंद चैंद व्यवहार कबू आकाश प्यार कबू भीता ब्रह्म विचार नानका मिला बनार कबू नृत्य कर भात कबू सोए रह दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बह बड़ राजा कबू बेखारी नीच का साजा कबू आप कीर्त मै आवै कबू भला भला कह वह जो प्रभ राखै तबीर है गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे बख्याल कबू मोन धारी लावै ध्यान कबू तड़ तीर्थ स्नान कबू साधिक मुख ज्ञान कबू कीटास पतंग हुए जी आनक जोन पर मैं परमिया नाना रूप ज्यो सुमांगी दिखावै ज्यो प्रभावै ते बिन चावै ज्यो सुभावै सोई हुए नानक दूजा वरना कोई कबू साध संगत उपावै उस स्थान ते बहुर ना आवै अंतर ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रति एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गबन पाई बिसराम नानक प्रभ कहे सद कुरबान सलोक सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज महान सुनक पाति हो सुवान जो जान मैं जो वनवंसो उत्बिष्टा का जंत आपस को कर मंत का आवय जन्म मरे बहु जोन प्रभावय तन भूम का जो करे गुमान सो मूर्खान दा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकियां मुक्ता गय सुख पावै तनवंता होय कर गर्भावै तृण समान का संग न जावै बहु लश्कर मानु पुरख मानु खूपर करियास पल पीतरता का हुए विनाश सब त्याप जान बलवंत खनमा हुए जाए पसमांत के सहन बदय आप अहंकारी धर्म रथ करे कुवारी गुरु प्रसाद जा का मिटै अभिमान सो जन नानक दर गए परवान कोड कर्म करें हों तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नींद्र वार दर गय को कैसे गावै आपस को जो भला कहा वैसे भला ही निकट ना आवै सर्व की हिंजा का मन होय कहो नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होई तब इसको सुख नाही कोई जाबे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे को बैरी मी तब लग ने चल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माय तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा दे बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हों छूटे सहस खटे लाख कोट धावे तृप्तना वह माया पाचै पावन भोग बिख्या के करे ने तृपतावै खाप खाप मराय बिना संदोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ वृथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख होय वटभागी किसे प्राप्त होय करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाव करण करावन करनै हार इसके हाथ कहाँ भी चाह जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो किसकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कह सांग बूझे ते कह करे बबे का पाए का पाए अनेक मरण बिन सया बन जाए नानक सदी रह आसमाय आप उपदेश समझे आप आपे रचे सब कै साथ आप कीनो अपन विस्तार सब कै सुस्काओ करण हार उसते पहन कहो किसो यथान थनांतर कै सो अपनी चलते आप करण हार कौत करे रंग या पार मन मैं आप मन अपने बाहि नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद कने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किन बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत के दुख निहार जा कटै संत के दुख जमते नि छुटै संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुखन मत होय मलीन संत के दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखै न कोय संत के दुखन तान भ्रष्ट होय संत कृपाल कृपा जी करै नान संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख भावै संतन के दुखन काग जौन लवै संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिक जोन करमाए संतन के दुखन दृष्णाम जलाए संत के दुखन सब कोश लाए संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच नचाए संत दुखी का था को नाए नानक संत भावै तो पीगत पाए
ਸੰਤਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤਾਈ ਸੰਤਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਨ ਟੇਕਣ ਨਾ ਪਾਈ ਸੰਤਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ ਸੰਤਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇਹੀਨ ਸੰਤਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਆਰਦੀਨ ਸੰਤਕੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤਕੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਸਦਾ ਅਭਿਯੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਉ ਸਕਾ ਪੀਉ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਭਵੈ ਤਉ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤਉ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਨਾਨ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾਂਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮ ਹੈ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਡਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਨਾ ਹੀ ਟਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਆਦਿ ਬੀਜ ਤੇ ਟੂਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈ ਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜਉ ਸਾਥ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜਕ ਸੁਨਾਹੀ ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪੇ ਕਾਏ ਸੰਤ ਕੋ ਦੁਖੀ ਕੋ ਅਵਰਣ ਰੱਖਣ ਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਓ ਮਿਲ ਲਾਈ ਜਉ ਜਲ ਬਿਉਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੋਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਜਿਉਂ ਪਾਪ ਕਿੰਦ ਨਹੀਂ ਧਰਾ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁਟਾ ਅਕੇਲਾ ਜਿਉਂ ਬੁਆਰ ਤਿਲਖੇਤ ਮਾਹੀ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਤੋ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖ ਸਦਮੇ ਤਿਆ ਕਹਿ ਤੋ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕਾ ਤੁਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਥੇ ਆਓ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰ ਗਏ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਸਹਿ ਖਾਈ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈ ਹੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੈ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੜ ਚੱਲਾ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਜੈਸਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਰਤ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਕਰ ਤਿਸ ਕਿਉ ਕਰਨਾ ਆਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਹਿਤੇ ਆਭੁ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨ ਆ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇ ਵਡ ਪਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨ ਹੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਈ ਕਾ ਸਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਕੀ ਟੇ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾ ਦੇਵਨ ਕੋਇ ਕਹਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਕਹਿ ਦੀਏ ਰਾਇਆ ਗਾਏ ਬੌਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਕੋ ਆ ਮਾਨੁਕੈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾ ਤਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂ ਸੁਖ ਹੋਏ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰਾਖ ਅੰਟ ਪਰੋਏ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ਅਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹਿਲਾ ਕਰ ਲਹਿ ਜੀਓ ਨੈਨੋ ਪੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭ ਸੰਗ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਟੈ ਭਾਵ ਜਪੀ ਹਰ ਬਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਣ ਹਰ ਕਥ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਨਾਨਕੂ ਜਲ ਮਾਤਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਗਣੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੈ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਹੋਏ ਏਕ ਪਛੈਨੈ ਤੁਤ ਗਿਓ ਸੋਜੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈਤ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਹਾਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿ ਤੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹੋ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿ ਤੋ ਆਂਦਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਭਕਿਆਨ ਗਏ ਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨ ਏ ਕੋਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆ ਸਤਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਸਨ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੈ ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਓ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ ਜੈਸਾ ਸਾਤੈ ਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀ ਜਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੂਝਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮ ਸੋਇ ਅਸਤੂਲ ਨਹਿ ਕਿ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ ਆਪਣ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮੈਂ ਆਪ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਜ ਤਾਪ ਤਾਪ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਹੋ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਅਲਖ ਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੁਸੋਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਨ ਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੀਹ ਲਏ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਡ ਭਾਗੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਭਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਨ ਪੁਰ ਕਉ ਤੁਮ ਕਰ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸਾ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਕਰਨ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਜੈਸਾ ਸਾਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ ਉਹ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੇ ਕੋ ਜਾਣ ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਣ ਹਾ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਨ ਉਦਰੀਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਸ ਮਨ ਮਾਹੀ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਧਾਰ ਜਾਪ ਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣ ਗਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ ਸਭ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਕਰ ਨਾਮ
रूपवंत नाही मोह है प्रभु की जो सगल घट सोवा तनवंता क्या को गर्भ है जा सब कित सका दी या दर भय अतसुर को कहावे प्रभु की कला बिना कहता आवे जे को होय बह दाता तस देन हार जान गावार जिस गुर प्रसाद टूटा हो रो नानक सो जन सदा रोग ज्यो मंदिर को थम थमन त्यों गुरु का शब्द मन स्थमन ज्यो पाखा नाव चढ़ तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यो अंधका दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होय बिगास ज्यो महोदयान में मार्ग पावे तुम साधु संग में ज्योत प्रगटावे तन संतन की बाचो तूर नानक हर लोचा पूर मन मूर का बिर लाई है पुरब लिखे का लिखिया पाई है दुख सो प्रभु देव नहारा बर त्याग तुम तिसे चितार जो कश करे सोई सुख मान भूला काई फिर जान कौन बसताई तेरे संग लपट रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माए नानक पत सीती कर जाए जिस वखर को लहन तू आए राम नाम संतन कर पाया तज मान लियो मन मूल राम नाम हिरदे मैं तो लाद के संतन संग चाल वर त्याग बिख्या जंजाल तन तन कह सब कोई मुख उजल हर दर गै सोई इहो वापार बिरला वापार नानक ताक सद बलिहार है चरण साध के तोय तोय पी वार साध को अपना जियो साध की जोर करो इशनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड़ पागी पाई है साध संगर कीर्तन गाइए आनक बिघन ते साधु राख हर गुण गाय अमृत रस चाख उठ गई संतन दरिया सर्व सुख नानक ते पाया अमृत कौ जीवालन हार भूखे कौ देव ते आधार सरवण दान जाकी दृष्टि माए प्रभ लिखे का लहना पाए साब के तिसकौ करण जोग तिस बिंदु सुर हुआ न होगा जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यो जन निर्मले करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाक मन गुर की प्रतीत ते जन आव हर प्रभ चीत पग पग सुनिए ते लो जाक हृदय कुह सच करनी सचता की रह तो सच हृदय सतमुख है चू साची दृढ़ साचा आकार सच वर्त साचा पासार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच सुमाता श्लोक रूप न रेख न रंग किस त्रिगुण ते प्रभिन्न तसै बुझाए नानका जिस हो वैसो प्रसान अष्टपति अविनाशी ब्रह्मन मैं राख मानो की तू तु प्री त्याग तिस्ते प्रै नाही किस कोय सर्व निरंतर को सोए आपे बीना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपाण दान दयाल बख्शांद साह तेरे की चरणी पाओ नानक मन वन राव मनसा पूर्ण शरण जोग जो कर पाया सोई होगा हरण भरण जाका नि तुरफूर तिसका मंत्र न जान होरण ध्रुव मंगल सद जाका है सर्व थोक सुनिए कर ताक राज मैं राजोग मैं जोगी ताप मैं तपीसर किस्त मैं भोगी त्याय ताय भगत सुख पाया नान तस पुरखा किन अंत न पाया जाकी लीला की मित नाय सगल देव हारे बगाए पिता का जन्म के जान पू सगल प्रू अपने सो समत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम ते आवै से दे गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिरे आवै जाय उच नीत के अवस्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेकर एक रंग नाना बिदगीनो विस्तार प्रभ बिनाशी एकंका नाना चलत करे कनबाए पूरे पूरन सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाए अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप तप जीवन नानक हर नाओ नाम के तारी सगली जानत नाम के तारी खंड ब्रह्मांड नाम के तारी सिमरत वेद पुराण नाम के तारी सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारी आकाश पाताल नाम के तारी सगले आकार नाम के तारी पुरिया सा भावन नाम कह समुद्र सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नान चौथे पद में सोजन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान कर तू सत सत जाके बाणी सत पुरख सब माए समाणी सात कर्म जाकी रचना सात मूल सात सत उत्पात सत करणी निर्मल निर्मली च सह बुझाए सह सा पढ़ी सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत जन जाकर दै प्रवेश सत नृत बूझै जे कोई नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सातु आपे जान अपनी मैं दगात जिसकी श्रठ सुकरण है हार अवर भूज करत विचार करते की मैं तना जाना किया नान ज्योत स्वभाव है सो वर्ती है विस्मन विस्म भय समाजन बूझै सा स्वाद।

हार, जाकै संग तरै संसार, जन का सेवक सुवड़ भागी, जन कै संग इकलिब लागी, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक पल पावै। श्लोक आदि सच युग आदि सच है पे सच, नानक होसी पे सच, अष्टपदी चरण सात, सत परसनार पूजा सात, सत सेवदार दर्शन सात, सत बेकनार नाम सात, सत अवनिहार आप सात, सत सवतारी आपे गुण आपे गुणकारी, शब सत सत प्रभ भगता सुरत सात, सत सत सुमता उम्बजन हार कौ, सत सब होए नान सत, सत प्रभ सोए, सत सरूप दै जन मान्या, करण कराव तन मूल पछान्या, जा कर दै विश्वास प्रभ आया, तत गंत मन प्रगटाया, पैती निरप होए बसाना, जिसती उपजत समाहि समाना, बस्त माहि ले बस्त कढाई, ताको पहनना कहना जाई, बूझै बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक गु, ठाकुर का सेवक सगा ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रति, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जान है सांग, प्रभु का सेवक नाम कह रंग, सेवक हो प्रपारण हारा, सेवक की राख निरंकार, सु सेवक उस दया प्रभु धारा, नानक सु सेवक साथ साथ समारा, अपने जन का पर्दा ढाका, अपने सेवक की सर पर लाका, अपने दास को दे बढ़ाया, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आ पात राख है, ताकि गतमित कोई ना लाख है, प्रभु के सेवकों को न पहुंचा, प्रभु के सेवक उचते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, निकी गिरी मैं कल राख है, पसम करै लश्कर कोट लाख है, जिसका सास ना काटते आप, ताको राखत देकर हाथ, मान जतन करत बो भांत, तिसके करता बिरथे जात, मारन राखै अवरण कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रभु लख बिड़ानी, बारंबार बार प्रभु जपी है, पी अमृत मंत्र त्रपी है, नाम रतन जन गुरमुख पाया, तिसके शबर नाम दृष्ट आया, नाम धन नामो रूप रंग, नामो शुकर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मंत्र नाम है नाम समानी, उठत बैठत शोभत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जासु जी बदन रातु, प्रभ अपने जन किनी दात, कर भगता तुम कह चाये, प्रभ अपने सुन रह समाय, जो हो आहो वत्सो जान, प्रभ अपने का हुकुम बशानत, की महिमा कौन बखान, उसका गुण का एक न जानो, आठ पहरु प्रभ सह जूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तन की उठले, मन तन अपना तन जन देहे, जन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व तो का दात, की शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्श पाप मिटा, बाबर श्याम सगली छाड, तिस जन की तू सेवा लागू, आव जान हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा, श्लोक सद पुरख जन जानिया, सदगुर तिसका नाओ, तिसका सांग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ अष्टपदी, सतगुर सिखी करै प्रतपाल, सेवो गुर सदा दयाल, सिखी गुर दुरमत मल हिराए, गुर बचन हर नाम उचरै, सतगुर सिखे बंधन काटै, गुर सिख गुर का सिख बिकार ते हटै, सतगुर सिखो नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी हे, सतगुर सिखा हाल पल सवार, नानक सतगुर सिखो जी नाल संवार, गुर कै गृह सेवक जोरा है, गुर की आग्या मन मै सह, आपस को करकश ना जनावै, हर हर नाम हृदय सतते आवै, मन बिच है सतगुर कै पास, सेवक कारज रास, सेवा कर तो इन्हें कामी, तुसको उत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा से आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बिस विश्व गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै,

मनमुख गणत गणामणी करता करे सो होए ताकी कीमत ना पवे जे लोटे सब कोए गुरमत।

खेल गए से पंखनों, जो चुंगन दे सिर तल, घड़ी के मोहत के चलना, खेलन आज के कल।

जाए सच्चा पेड़ मल, बिन गुरु प्रीत ना उपजे, बिन गुरु प्रीत ना उपजे, हमें मैल ना जाए। मन मेरे शरण आवे ता निर्मल होए, मन मुख हर हर कर थके, मैल ना सकी तोए, बिन

जिस प्यारे सोने हो तिसे आके मर चलिए मन तन आगे राख के ऊ भी से करे सतगुर आगे शीस पेट देओ जे सतगुर सच पावे जे सतगुर सच पावे आपे दया करो प्रभु दाते नानक अंक समावे जिस प्यारे सियाने हो तिसे आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे हमारे एहे कृपा

दर्शन कैसे रौस नहीं, हाँ दोहागन खरी रंजानी। सब कंत है रतिया मैं दोहागन कित, मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर। मैं तन योगन एतड़े खसम न फेर। मित्र प्यारा नानक जी

मैं छट गवाया रंग कसुंब पुली तो सजन की मैं की मन पादी हों तुद बिन अड न लहदी।

कर ताड़ी लाई शुद्ध रस नाम मारस मीठा शुद्ध रस नाम मारस मीठा निज कर तत गुसाई तेही मन जैही तै राखिया ऐसी

पान खड़ग केत, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हासद ले उबारी, सर्व ठौर मो दुष्ट दोख ते